0: भाई चलो लोग जो कंधे से गाते क्या मैं ना थैंक यू
1: Roger, clear, Dylan. Thank you.